0: Or it's a good thing for you, baby. Or it's not going to be a good thing. Or it's a good thing. और हिंदी का पूरा गई गिनवा सुदूर पे हाथ ले गई गिनवा और वीरी विचार ले गई गिनवा कल मत भूल गई कल मत गिनवा कल मत भूल गई वर जाओ कहीं निकाल गिनवा वर जाओ मरी गिनवा गिनवा वर जाओ नीरी फरार गिनवा सुदूर भाई गिनवा हसन फरार गिनवा तीन हर निकाल फरार गिनवा दूसरी हर तो ये फरार Somebody gave me a house and five guinea rock, gave him a thing in the evening.
1: Vani gani puru aayi gani, gani gani tiwa What if one jar out there, baby? Will be the fire, baby, in the bar.